0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
3: मंगलसूत्र झुम्का र पाउजु कहाँ बनाएर ल्याउनु।

आज ही हम लोग लेट्स गो 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले एआई पावर्ड कैमरा 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आदम, हमारे इस कन्फेशन वीडियो की हेल्प से ही इजीली पुट स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। विल बी अ फ्री मैन सून आदम।
3: सेंड मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज विल बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट अप।

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो.
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती. हमें मिलना है, हम देखते हैं, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.

0: अभी भी रात को 5 बजे
1: हजूर को रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: मंगल सूत्र झुमकारा पाउजू का बनाएर ल्याउनु।

हस्त दस बजे हजर को मुख्य मुख्य समाचार सको हम भेट भोलि बिहान 9 बजे हजर को समाचार में होने नीतिजलसम को समाचार सहयोगी साथी विशेष धन्यवाद दी मस्त्री राज महत्व समाचार बिदा हो नमस्कार शुभरात्रि